इबर आस्ते वक्त सिविताली ताप टेक्सस कॉल से बोले आपको बच के लिए शे ताप को अन्य से ताप के ले के ने कि है कारों ने कासी ताप मुतर की ताएंग रहा है ताप तो मानी के नहीं को ये तेजाई तो एक ने पकारों पैसे तू के ताप को अन्य से नो तो ने पैसा आगो इंचे जांगी इबर सी मोई तें नंबर 0724 109 214 0724 109 214 and 0726 722 592 0726 722 592 or 0724 109 214 Chotoka Brasso Shikabagatu, Lawexi, Agabrasa, Tagangan of a Mate.